0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो पंचन मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पीप का आला पीप करंट्स अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार।

ने कह के दिखाना है, फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए। ठीक है, ये कहना है फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए, इसको कह के दिखाएंगे। तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को। ठीक है, तो ये हो

0: जाओगे जी 03000113488 जिसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे और मैसेजेस और कमेंट्स बहुत सारे आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो कमेंट्स की तरफ अगर हम चलते हैं और हमारे रमेश कुमार खत्री हमें सुन रहे हैं और बहुत सारे नाम लिख भेजे हैं आपने. अब्दुल रजाक हमारे से मौजूद है, रेहान खान भक्कर से हमें सुन रहे हैं, सॉरी रेहाना खान, रेहाना खान आपको मैंने रेहान खान बना दिया. ओके कोई बात नहीं, कॉल्स लेना स्टार्ट करते हैं जी. सो सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं.
1: हाफिज लखमीर.
0: हाफिज लखमीर, मुझे ये बताएं टंग ट्विस्टर बोलेंगे.
1: जी बताइए बताइए क्या.
0: टंग ट्विस्टर ये है कि फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए.
1: फालतू?
0: हाँ जी फालतू. अच्छा और कुछ कहेंगे.
1: हमने गाना सुनाई कल, आपने मेरा गाना प्ले किया था.
0: कौन सा वाला?
1: बहुत बराबर मलाई का यार, साल मलाई का गाना है. मेहरबानी करके प्ले करो, आपकी बड़ी मेहरबानी.
0: ओके जी प्ले करते हैं, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और 03000113488 एक और कॉलर. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, बाकी क्या हाल है
0: जी. खैरियत है, कौन कहाँ से?
2: शहर गुलाबी गाड़ी कोट बशाम खान से, शहर गाजी खान रिंद.
0: गाजी खान रिंद भाई कैसे, ठीक ठाक?
2: अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाओ.
0: अच्छा मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं.
2: जी जी बिल्कुल सुनाओ.
0: ओके तो टंग ट्विस्टर सुनाएं.
2: हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे.
0: सुना दे.
2: नहीं
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गाना गाना नहीं, गाना नहीं. हेलो भाई गाना नहीं, टंग ट्विस्टर. टंग ट्विस्टर सुनाएं.
2: फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए, फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए, फहद ने वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए, फहद ने फॉर्म फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए, फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फॉर्म फिट किए.
0: ओके जी और कुछ.
2: पहले तो धुन में सुनाऊंगा आपको.
0: गाने वाला सेगमेंट खत्म हो गया भाई मेरे. ठीक है अपना ख्याल रखें बहुत सारा, अल्लाह हाफिज. 03000113

के साथ नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं और सॉन्ग के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा मेरे पास और ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेस, अलावा ब्रांच नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हेलो अस्सलाम जी मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। सागर भाई
1: दोबारा लग गई मैम।
0: दोबारा लग गई। आज की अच्छी बात बता दें।
1: आज की अच्छी बात ये है कि मैम गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा चले, ये तो प्रिकॉशन हो गई ना, तो अच्छी अच्छी बात क्या है? हेलो
1: हेलो जी, जी
0: जी जी, अच्छी बात क्या है? सोच रहे हैं आप, सोच लें।
1: मैं सोचती हूँ, सब समझ रहे हैं अच्छी बात को, मैं सबको पता है अच्छी बुरी, मेरे ख्याल सबको पता है, मैं क्या बताऊँ, सोचूँ क्या इसमें।
0: अच्छा वैसे कल भी आपने यही बात बताई थी मेरे ख्याल से, है ना?
1: जी जी मैम, तो ये की जबान मर्द का जबान एक ही होता है मैम।
0: अच्छा, औरतों की दो जबानें होती है क्या?
1: वो तो आप जानो मैम, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं अपनी बात करूँगा।
0: हाँ वैसे ये बात है, लेकिन मुझे ना उल्टा लगता है। खैर और कुछ?
1: चलो ठीक है, ठीक है, हुए होंगे ना।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और आज की अच्छी बात हमने सुनी, और क्या, और मैंने एक गाना प्ले किया था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सो फाइनली हम लेंगे आपसे इजाज़त, और इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिट चैट होगी शाम को 7 से लेकर 8 बजे वाले ट्रांसमिशन में, तो सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। So this is me, RG Rukhsar, signs out. अच्छा जाने से पहले एक मैसेज नजर आया है मुझे। सलाम बाजी जुल्फिकार अली खोड़ो फ्रॉम आखिर बाजी शो नाई से, प्लीज प्ले मास्टर मंजूर, कल चलाएंगे, लास्ट में सुनाओ बाजी रुखसार को, मयार मिल जाएगी। अच्छा में अब ये वाला सुने, ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी, लिव सिंपल बट थिंक हाई। दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन्स आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमाने खुदा, अल्लाह हाफिज़।

अमरीका ईरान जा अमन गालियुनि दौरान हिक ॿिए ते हमला। अमरीकी फ़ौज तेहरान ऐं बंदर अब्बास जी बमबारी। टॉमहॉक मिज़ाइल जो इस्तेमाल, जानी नुक़सान थियण जा इतला न मिलिया। सेंटकॉम मूजिबि हमला ईरानी जारियतवाद कया विया, जिन खे हाणे रोकियो वियो आहे। सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज 49 टॉमहॉक मिज़ाइल ईरान ते फायर कया आहिनि। तेहरान ते मौजूदा हमलनि में इसराइल शामिल न आहे। जेकॾहिं ईरान मुआदो न कयो त बमबारी करे असां हालति ख़राब करे छॾींदासीं।

अमरीकी हमलन जो जवाब में ईरानी फौज जा खिते में मौजूद अमरीकी फौज अडन ते हमला पाजरान इनकलाब चया तो बहरीन में अमरीकी फौज के फिफ्थ फ्लेट में कोवैत में फौजी अड के निशानों बढ़ाया हुआ है। कोवैत में अलिसाम अहमद अल जबा एयरबेस के निशानों बढ़ाया वो बहरीन में शेख ईसा एयरबेस से मिजाइल फायर किया वह बहरीन के घर वजात मौजूद फिजा में तबाह कल ईरानी ड्रोन जो मलबो किरण सबब एक नीगरी जख्मी थी है कुछ घर के नुकसान पहुंतो। पाकिस्तान पारा अमरीका ईरान में ताजी छिकटाण से गणती जाहिर धुरन के सब्र का कम वा जगबंदी से अमल करण की अपील परडे तर्जमान ताहिर हुसैन अंदरबावी है तो खिते में जारी मौजूदा सूरतयाल से गणती है तकरार गाल सफारतकारी जरिए हल कर घुर्जे। पाकिस्तान जो खिते के अमुन इस्तकाम सफारती कोशिशों जारी हैं। इसराइल ए लबनान में थियल जंगबंदी पर मस्बत अकबराई है। इसराइल के जंगबंदी मुआदे से अमल करण घुर्जे।

गाज़ी अहमद गढ़ से पुलिस एहलकार जो लाश पुलिस चवण है एहलकार जबल जमाली जो लाश कमरे में मिलो है जांच करूं पाया। कश्मीर भरसा हथियारबंदन घराडो बीठल नौजवान के कतल कर छो। कचे वाले इलाके में हथियारबंदन नौजवान रहमतुल्ला मजारी के कतल कर। दोदापुर वेझो मीरामपुर वाले इलाके में हथियारबंदन की फायरिंग में एक जणो कतल बजणा जख्मी। कोको पुलवट नामालूम हथियारबंदन की फायरिंग में बुढ़ल बिरोही के कतल किया। जवाबदार फरार।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तंगे जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है। ठीक है, अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहूंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, बिल्कुल जी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो बताएंगे जी, बहुत ज्यादा वाली बातें बताएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की, ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको

बात है ये आप लोगों के समातों की नजर करते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

जनाब की आबादी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी जहाँ जहाँ तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आई हूँ। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि ये सवाल जो है ना वो मुझे आप लोगों से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आजकल जो है ना वो मोबाइल के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है आजकल। हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के बिना शायद जिंदगी जो है हमें अच्छी लगेगी भी या नहीं। तो मेरा ये आज आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि आप लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए, यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएं कि उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना मोबाइल है ना ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर से यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर्स, तो आप क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, इसे आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे।

और शेयर कर देंगे. तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं. ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक और शेयरिंग दिया करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते. तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप लोगों के लिए, व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए और उसके अलावा जो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है. ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली आप लोगों को मार्केट से मिलने वाले हैं. तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595. ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, आपके गोट में, आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए. ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा. ऐसे के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के. फर्ज कर लें जरा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता. ओके जी, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम, खुश शाही जी जी सफा खुश तामदाय की आयो. कहते हैं सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं. बिल्कुल जी. और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुश आमदीद कहते हैं. और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आ कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच. और हिदायतुल्लाह कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे. अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है सिदरा, आज ये सॉन्ग चला दी असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थी, लिंक भेजू. बिल्कुल जी, आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा. और वफा मीर मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद. और मौलाई मुजाहिद बोजार में सुन रहे हैं ठूक चूसल से, अस्सलाम वालेकुम सिडो जी, केड़ा हाल आहिन, उम्मीद तो बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा, असा तमहां के शो में वेलकम था चूं, असा भी तमहां के शो में वेलकम था चूं, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद. मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, वेलकम मोहम्मद जमान भाई. और मोहम्मद अली खोसू हमें सुन रहे हैं मटियारी से, मोहम्मद अली खोसू भाई आपका भी वेलकम करते हैं. साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और उसके अलावा अदनान नूर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते आरजे गोइंग वेरी वेल एनर्जेटिक स्टार्ट, बहुत शुक्रिया अदनान नूर आप हमारे साथ मौजूद है. और हिदायतुल्लाह कहते हैं अदी तूने नोट किया है कि तुम्हारा फ्रिज चलता तो है लेकिन घर से बाहर नहीं चलता. हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती जो चलती तो है लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती. तो टेंशन ना ले. और किशोर भाई कहते हैं कि हमें तो आदत है इंतजार करने की, तुम करवाती रहो हम करते रहेंगे. सलाम अदी, खुश आयो, यस माँ ठीक था मजा आज भला अदी चाहे तो वह खैर था. और कहते ओ नो ये क्या पूछ लिया आज. बिल्कुल जी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछ लूं. अशोक कुमार हमें सुन रहे हैं, अशोक कुमार भाई हेलो, एस एन आर बाणी वालेकुम अस्सलाम, कहते ओ माई फेवरेट आर जी, आप कैसी हैं, लिखते हैं वेलकम टू द शो व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद. और मौलाई मुजाहिद बोजदार कहते हैं सिडो जी आज एक सॉन्ग प्ले करेंगे पाकिस्तानी मूवी का, ये दिल आपका हुआ सॉन्ग वो लड़की है या जादू. सिडो जी लाहूती साजन चांडियू भी आपका शो सुन रहा है. अच्छा, यानी कि ठीक है जी, गाना आपने अच्छा बोला है तो लाजमी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे. और बहुत शुक्रिया, आप दोनों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम में. और इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका फोन सेल फोन मोबाइल ले लिया जाए तो एक
एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करेंगे बताएं मुझे जल्दी से। और साथ ही अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। डायल करते जाइए, खूबसूरत होते जाइए। यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

बिल्कुल वहाँ प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा, आपकी खातिर मेरी आपी और भाभी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सोप के साथ इस्तेमाल कर रही है और मैं खुद व्हाइट एश लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है। हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना। इमरान भाई, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और उसके अलावा हेंची ये कहते हैं बाजी टॉपिक का जवाब है, मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा। पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है। और इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ शुक्रिया। फकीर मोहम्मद हमारे साथ पाक आर्मी पनो आखिर से कहते हैं आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह खुश रहें, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बाजी टॉपिक है मोबाइल के बिना एक हफ्ता क्या एक मिनट भी नहीं रह सकता, अब आगे जियो करे, हाजिर साइन जियो तक आयो। और ये हमारे साथ एक कौशल कहती है जन्नत आप कैसी है, आपकी जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कौशल आप कैसी हैं। और कहती हैं वो तो मैंने बताया था ना, ये आपकी गलती है कि आप शो सही से सुनती नहीं है। और उसके अलावा क्या कहती है, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, कल चले फिर आपने साइलेंट होकर शो सुना, फिर बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा, जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज़ ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और ये कौशल कहती है जन्नत अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे, मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं, वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ। अच्छा, साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ, आपका शो मस्त है जैसे, ठीक है। और कहती टॉपिक भले ले जाओ मैं तो चली जाऊंगी अपने गाँव, हाँ भाई गाँव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। हम कहती दिलबर आपी आपकी कल से मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी अजीब हो गई, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल, आप दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और न खा अलावा जी को आते जी की मानो सा के फेसबुक ते बुद्ध पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हल और तुम्हारी शेयरिंग मुख्य थोड़ी कम नजर अच्छी पाई ई छू कंदा आयो। अच्छा, शेला कुल जो गानो हलायो थम, मैं शेला कुल जे गाने हलाने संगत दसांगे लुबना नजर अच्छी वही, लुबना कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। ओके जी, आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं, नाइस शो एंड नाइस सॉन्ग शेला गुल का, हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा था कि शेला का गाना सुनकर आप जरूर आएंगे।

हाँ जी बैठी तो अच्छे बैठी तो अच्छे सबर कर समंदर गांगरू हमारे सारे समंदर भाई कहते हैं हाय आरजे एंजल सिड आप कैसी नजीर अहमद गांगरू हमारे साथ हैं ओके जी वेलकम वेलकम और आदिल कहते हैं कि जेकडे मुझे मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमा आईने सा सेल्फी कडन दिस पोए समझ में इंदी तो अपलोड कंदा सी कंदे हैं कंदे हैं अपलोड कंदा जदी आईने सा सेल्फी कडना तो अपलोड किया थी आई तो हर 5 मिनट बाद किसी में हथ हणंदस मोबाइल न मिलंदो तो पंजो कन सिकिंदस अमर की चवंदस मुझो दिमाग हैंग थी वयो आहे वी स्टार्ट जो बटन काडा आहे किथे आहे अच्छा आई पाड़े जे बारन खा पुछंदस भाऊ वाईफाई जो पासवर्ड होए चवंदा चाचा असा वट भी नेट नाहे हफ्तो पूरो थिनो त मोबाइल के ए भाकुर पाइंदस जी गुम थेल प्यारो वापस मिली वेंदो हो जी अच्छा ये तो बड़ी भाई आपने अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी अगर वाकई सेल फोन हमसे ले लिया जाए तो शायद कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हो सकती है हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं ओके जी हसन कहते हैं टॉपिक भले दह दिया मोबाइल खसे छड़ने पर वही कोने हाँ कुछ मानो इड़ा भी हुंदा है अच्छा वासु भाई कहते अदी सिडो गाल तई सिद्धी मां सिर्फ वाटेश वारन जो साबुन वठंदुम ता साबुन वठो फेस वॉश वठो पर वठो तो सही ना हिकड़ी शी इस्तेमाल करना तो तांगे खबर पंदी तो बाबा वाकई प्रोडक्ट में दम आहे तो तमा लाजमी वठो इस्तेमाल कयो उनका अलावा दर्दी दिल कहती है टॉपिक चंदा क्या करती मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं तो आज सोच लेना आप सोच कर मुझे बताएंगे अगर एक हफ्ता आप लोगों से फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले क्या कुछ करेंगे जल्दी से बताएं प्रोग्राम कैसे बनते जाएंगे यहाँ पर टाइम हो जाता है कि हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए

सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ माज़ूर शख्स की दरख़्वास्त थी ॿुधणी। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां जमा करायल जवाब रद्द करे छॾियो। अख़्तियारनि ते कावड़ जो इज़हार। एस पी एस सी जे चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं कंट्रोलर ज़मल जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया। टिनी ॼणनि खे तोहीन अदालत जो नोटिस बि जारी। सूमर ते पेश थियण जो हुकुम। अदालत रिमार्क थींदे चयो त अदालती हुकुम ते अमल न थियण ते बाबति जवाबु ॾिनो वञे।

अमरीका ईरान जे अमन गारन दौरान एक वेते हमला अमरीकी फौज तेहरान ए बंदर अब्बास ते बमबारी टॉमहॉक मिसाइल जो इस्तेमाल जानी नुकसान थियण जा इतला न मिलिया सेनका मूजिब हमला ईरानी जारियत बाद कया विया जन के हाणे रोकियो वियो आहे सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फौज 49 टॉमहॉक मिसाइल ईरान ते फायर कया आहिनि तेहरान ते मौजूदा हमलनि में इसराइल शामिल नाहे जेकॾहिं ईरान मुआतो न कयो त बमबारी करे संदन हालत ख़राब करे छॾींदासीं अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरानी फ़ौज जा खिते में मौजूदु अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते हमला पात्रा ऐं इनकलाब चयो आहे त बहरीन में अमरीकी फ़ौज जे फिफ्थ फ्लेट ऐं कुवैत में फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो आहे कुवैत में अली असलाम ऐं अहमद अल जबार एयरबेस खे निशानो बणायो वियो बहरीन में शेख ईसा एयरबेस ते मिसाइल फायर कया विया बहरीन जे घरू वज़ारत मौजूदु फिज़ा में तबाह कयल ईरानी ड्रोन जो मलबो किरण सबबु हिकु नींगरी ज़ख़्मी थी आहे ऐं कुझु घरनि खे नुक़सानु पहुतो

0: जंहिंजे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में ॿ ॼणा क़तल, पुलिस अहलकार जो लाश थे कश्मीर भरिसां घराडो बीतल नौजवान क़तल, हथियारबंदनि नौजवान रहमत अला मज़ारी खे क़तल कयो, दौदापुर वेझो मीरापुर वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी, को पुल वटि हथियारबंदनि ॿुडल विरोही खे क़तल कयो, वारसनि जो जेकम बाद में लाश रखी धरणो, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुताबो, काज़ी अहमद भरिसां कमरे मां पुलिस अहलकार जबल जमाली जो लाशत, वारसनि जो सकरनि में एहतजाज, पुलिस ते बेतमादी ज़ाहिर, गंबट वेझो खैरपुर लालकाणा रोड तां नामालूम शख़्स जो लाशत, पुलिस इतलाउ ते लाश अस्पताल मुंतकिल कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हैरतअंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

तब मैं करूंगा, ये बहुत गलत बात है। एम अंसारी कहते हैं कि टॉपिक पर कहूंगा कि अगर किसी ने सेल फोन ले लिया तो वो हॉस्पिटल में बेड भी बुक करवा दे अपना। चलें, क्या बात है, इतने खतरनाक हैं आप माशाल्लाह जी। और आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में मिलेगी जभी तो जाकर आप परचेज करेंगे ना। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बात की जाए तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फायदे कितने ज्यादा है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताने लगे हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई है जो कि एक अच्छे वाले प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ये एहसास होता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज भी पहले से पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबको इस्तेमाल कर सकता है। एक और मजे की बात, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड फॉर्मुलेशन के साथ जो है ना वो तैयार की गई है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रीम साबित होने वाली है। और इसी के साथ साथ ये आपकी जल्द की जो है वो आपकी जल्द की अंदर तक जाकर आप लोगों की खूबसूरती को बहाल करती है और आपकी जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम और मुलायम बनाती है और हमेशा आपके स्किन को तरोताजा रखने में मदद देती है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाकायदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जल्द जो है वो बेरोनकी अगर आपकी जल्द में आ चुकी है बहुत ज्यादा तो वो कम हो जाती है, आपका चेहरा ज्यादा रोशन और साफ नजर आता है। और उसके अंदर जो है ना जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीड्स शामिल किए गए हैं और ये जो माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन तैयार किया गया है तो ये बहुत ही एक अच्छा फार्मूला है जो कि आप लोगों को हर किसी को लगाना चाहिए, खास करके उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी स्किन के ऊपर जो है ना कोई प्रोडक्ट जल्दी में सूट नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ना कोई भी प्रोडक्ट जल्दी में सूट नहीं करता और वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारी स्किन के लिए भी क्या कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो बिल्कुल जी, जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो वाकई ऐसा महसूस करेगी कि हमारी स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात हैं या फिर खवातीन हैं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है जो कि डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। और डी स्किन फेस वॉश के हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है और जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है और आप लोगों को ये अंदाजा हो जाता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द हजरात हो, खवातीन हो। और इसी के साथ साथ जब डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल करेंगे तो इसे आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि सुबह, दोपहर और रात के टाइम। और रात के टाइम तो लाजमी आप इस्तेमाल करें क्योंकि रात के टाइम जब आप फेस वॉश करके सोते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों के फेस पर होती है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्म्स आपके स्किन पर जमा हो जाते हैं। जब आप उन्हें रात को भी रिमूव नहीं करते, रात को भी फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तब आप लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना ये एक्ने आ जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं और निशानात बन जाते हैं। आपकी स्किन जो है ना वो मरना स्टार्ट हो जाती है। जब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जिंदा रहे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो आपने रात के टाइम जो है ना फेस वॉश लाजमी करना है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तो गर्मियों के सीजन में तो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि भाई फेस वॉश इजी से हो जाता है, आराम से हम कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों के सीजन में थोड़ा सा आप सोचते हैं कि भाई नहीं करते। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो आपने रात का फेस वॉश बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रात के टाइम फेस वॉश करें, सुकून से अपनी स्किन को क्लियर करें, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना शुरू करें। और जब आप 2 रातें इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तब आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके वोट में नहीं मिल रही तो आपने डायल करना है 03 15 799 0595।

ओके जी, ए एम अंसारी कहते हैं यूप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप इन नवाब शाह, मुझे फ्री में दिलवाए ना. अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है. और कहते हैं मुझे भी गोरा चिट्टा होना है प्लीज.

मूलाए पारत करायो वाइट एश आई डी इसकिन वारन के कसम थव मासी चपरान जो ना मासी चपरान जो कसम ना जो खैर तमान जिलाए जेको ना अस अवेलेबल कराए सडिया ता आनी तमान की जेको ना फ्री में बिजाराइंदा टेंशन ना वठो बस तमान जेको आ त चिटे थेने जिलाए थोड़ो मेहनत कंदा कयो तमान की या चीज खबर हो जन को मार्केट में केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आ आई केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जन सगन उई तमान जी स्किन जिलाए जरूरी आन यार द डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तमान जी एरिया में मिलन था त बिल्कुल तमान की जारीदा तमान जिला गिफ्टिंग वारो सिस्टम स्टार्ट कंदा सी पर थोड़ो टाइम गुजरन दियो।

0: अच्छा अशफाक कहते हैं कि सिदरा लाहौर मां केड़े दुकान था मिलंदा प्रोडक्ट लाहौर मां तव्हां मालूमात वठो न था मिलंदा पो मुखे बुधायो किथे किथे अवेलेबल नाइन तोसां अवेलेबल कराईंदास अच्छा एसन कहते हैं पर तव्हां शो न कयो त पोइ असांखे मोबाइल जी ज़रूरत नाहे अच्छा माने अगरि असां शो कयूं था तॾहिं तव्हां मोबाइल जेको आहे इस्तेमालु कयो पिया चलो इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे इहा बि असांजी कामयाबी अच्छा ये अशफा क्या कहते हैं अच्छा चलें ठीक है और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है रिहाना आपको वेलकम करते हैं और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है अनवर भाई तुम्हारे मोहब्बत प्रोग्राम बुधो प्यार टॉपिक चौथो बो मसलो ना है पर तुम्हारे प्रोग्राम एफ बी की बुधंदस हाँ वाकई यह सोचने वाली गाल एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे मां ब्लैक थी वेंदस अल्लाह न कंदो तो मां वाइट वाइट थी वेंदा ऐं तव्हां थोरो सबर कयो थोरो वेटिंग कयो सही छो त कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे वेटिंग जो फ़ाइदो मिलंदो आहे सो वेटिंग करण बि सुठी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हां जेको न नंबर ते राबितो करे वठो ठीकु आहे अच्छा कुझु ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी ॻाल्हि थी हुई उहा मां तव्हां सां शेयर कंदसि पर हिते ॾिठो वञे त टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे वेठे वेठे यादि अची वई जॾहिं एम चयो त मूंखे फ्री में गिफ्ट ॾियारायो तॾहिं हिन ॻाल्हि ते जेको आहे मूंखे इहा ॻाल्हि यादि अची वई मां तव्हांखे ॿुधायां थी थोरो सबर कयो पोस्ट खे तव्हां लाइक एंड शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट वठण जी तव्हांखे जेको आहे न तव्हां सोचो था कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां वठी चुका आहियो इस्तेमाल बि कयो पिया छो त जेके माण्हू अञा सोचनि था न उन्हनि जे लाइ इहो आहे त बाबा तव्हां जल्दी वेठो देर न कंदा कयो अगरि तव्हां बि देर कंदा त पोइ तव्हां बि ब्लैक ब्लैक थी वेंदा त मां इहो नथी चाहियां त तव्हां ब्लैक थी वञो तव्हां वाइट वाइट हुजो ऐं तव्हां सोणा सोणा हुजो ऐं तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि ॿिन्ही जो इस्तेमालु कयो उन खां अलावा जल्दी मोटी चवंदी तव्हां करे न वञो मां उहो ई वञी उहो ई अचां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड Keep listening. White Age and E-Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and E-Skin Beauty Products. Lagati rahiye, khoobsurat hoti rahiye. Assam bhi brand, assam ja yaar bhi brand thi. Assam bhi brand, assam ja yaar bhi brand thi.
1: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से
2: तो डालो धमाल और बोलो
1: GAFM 88
2: सिंध की आवाज
0: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
2: जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ हैं मकसूद मलहा, आपको वेलकम करते हैं। साइमा मीर कहती है लाड़काना की हर चीज अच्छी होती है, जैसे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, और लोग तो और भी क्या बातें, प्यारे हैं जी माशाल्लाह, अब मेरी सिद्रा को ही देख लें।

हाँ जी बस सिद्रा को ही देख ले. उसके अलावा नूरिस एंटोनियो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया. साइम अमीर कहती है, सिड्डो ये जुकाम गर्मी वाला, हाँ भाई गर्मी वाला जुकाम हो गया मुझे, ये वाकई खतरनाक होता है, सर्दी वाले जुकाम से भी ज्यादा. तो बस दुआ कीजिएगा ठीक हो जाऊं जल्दी से. और उसके अलावा अच्छा ये गाना लगाइए स्पेशली हम शोनी को डेडिकेट करेंगे. शोनी

ओगरी शोनी क्या कहती है, शोनी कहती है आप ही जान में भी आ गई आपके शो में, आप ही अभी लंच करके अपने रूम में आई हूँ और मेरा आप शो सुन रही हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपने क्या सोचा है, कब लगाएंगे।

अच्छा इमरान भाई, मुमताज मलिक का गाना चल गया ना एक, तो फिर ये वाला गाना आपका हम कल सुनेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। एम कहती यार जवाब है, मैं मोबाइल से बेजार हूँ, अगर कोई एक महीने के लिए ले ले मुझसे मोबाइल तो मैं आपको MP3 में सुनूंगी और आपके पास SMS के लिए अरीबा से फोन लेकर मैं आपको मैसेज कर दूँ। क्या बात है, आपने तो पहले से सोच रखा है। चले बहुत बढ़िया। अच्छा वलीद मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम करते हैं आपको। और उसके साथ साथ हैं जी इरम कहती हैं, अच्छा बहुत शुक्रिया प्यारी। अच्छा ये फौजी पठान खान खोसो हमें सुन रहे हैं भाई जान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा मीर कहती सिडो ये वाला सॉन्ग बच्चे घर में खेलते खेलते गा रहे थे, एक बच्चे ने एक लफ्ज का मतलब पूछा, मैंने मतलब तो बताया लेकिन कहा के बाद आपका मैसेज जो है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है। साइमा कोशिश करें ये कहा के बाद में जो आपने कहा है वो जरा दोबारा भेजिए मुझे। हाँ भाई जैसे गर्मी चल रही है तो मोहब्बतें गई भाई, जुती जरूरी है, ऐसे नहीं घूमा जाएगा।

बिल्कुल ये गाना ट्रेंडिंग चल रहा है. और नखा अलावा जेको आसो के रसा सगेडा. अच्छा गाना खत्म हो चुका है सो हम यहाँ पर दूसरा वाला गाना लगाते हैं. ये जी गाना होने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा.

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा अलीजा टॉपिक का जवाब दे रही है कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती, आपके मोबाइल से करती, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दब। अच्छा किशोर भाई कहते मानो अला के साइलेंट थी शो बुधन था हू भी तो जड़ी आरजे जो ना मुमकिन वो वी मिनट अलाय की पाना के रोकियो मां भी सोचा लाए कादे भाई वदो मुखे लगे पे अज भी ता सुमी प्यायो नडी वांगे

हा बाबा एतरी गाल ती छो नाराज थी वेंदा आहिनि, ढोल वरी पो मनीदा नहीं है। अच्छा ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाइए, डी स्किन फेस वॉश आपके लिए आप लगाइएगा, और साथ में व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए। तो जनाब आप लाजमी जो है वो ट्राई करके देखिएगा। बिलाल अली कहते हैं हर रोज कोई आपके शो की लिंक मेरे आईबी में शेयर करता है, यार सोचा ओपन करके देख लो। चलिए आपने बहुत अच्छा किया। वैसे तो अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होने को आ रहा है बिलाल, सो आपको वेलकम करते हैं। कल आप मुझे 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? अरे किशोर भाई कहते नन्ना तवान जो शो ही तो मुख्य एक्टिव रखे थो अल्लामा सदको। मोहम्मद समान कहते हैं आज के सवाल, आज का सवाल ना ऐसा है जवाब देने से पहले मायूस हो जाते हैं। बात वैसे सही आप कह रहे हैं। और दर्दे दिल कहती हैं पता नहीं क्यों, पता करवाए ना, मैंने जानना था।

वाकई इतने सादा और बेवकूफ लोग हैं, कि जरा सी अपनाइए, थोड़ी सी तवज्जो और चंद मीठे अल्फाज मिले तो हम अपनी जात के सारे पर्दे खुद ही हटा देते हैं। दिल की वो बातें भी कह देते हैं जो बरसों खामोशी में दफन रहनी चाहिए थी। हमें ये गलतफहमी बिल्कुल हो जाती है कि सामने वाला हमें समझ गया है। यही वो मकाम है जहाँ दिल सबसे ज्यादा लुटता है, क्योंकि हर मुस्कुराहट सच नहीं होती और अपनाइयत खालिस नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं कि हमें खुली किताब बनाकर हमारे लफ्जों से अपने फायदे की मतलब निकाल सके। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब तलाश करते हैं। वो खुद को आपका खैर ख्वाह जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं होता।

ओके जनाब, से प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो का जो वक्त है वो खत्म होने को आ चुका है। साइमा मीर, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे डाटा करी बच्चों को। और ये जी हजार खान भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गुलाम रहीम बलोच, हमें सुन रहे हैं, आपका शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और यहीं पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है डेली बेसिस के ऊपर। और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह, जिनके फीडबैक्स रह चुके हैं उनसे माजरत करते हैं, जिनके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में उनसे।

जनाब यही कहूंगी कि कल आके आगे गाने लगा दूं। हाँ वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहीं मैं गजनी तो नहीं हो गई। मैं वाकई बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ और प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाली होती है लेकिन वो भी भूल जाती हूँ। वाकई लगता है कि मैं अब गजनी होती जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा वाला, मुकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास फोन नंबर 03032617077।
1: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
2: सिंध का शहर खास
1: मीरपुर खास
3: छा चाहो था तो अवा जो पैगाम बेन ताई पहुंचे चाहो था तो अवा जीप को पैगाम हर हंध जीए मीरपुर खास FM 88 केतरन ही नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 03227243 01 आई 03333722071।
1: मीरपुर खास की आवाज सिंध का हर चपशा
4: जीए FM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: जीए FM 88 नेटवर्क।

0: कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तुक्का लग गया आपका आज भाई।
1: अलीजा भी शो सुन रही है, अम्मी भी सुन रही है।
0: अम्मी से कहिएगा प्लीज मेरे लिए दुआ करें, अलीजा से भी कहिएगा मेरा गला हद से ज्यादा खराब है, फिर मैं छुट्टियां कर लेती हूँ, लिस्नर शक करने लगते हैं ये इतनी लंबी छुट्टी पे क्यों चली गई है। बहुत शुक्रिया आपका सबका, थैंक यू। ओके जी, और ये नेटवर्क, अच्छा मुझे अब मुझे समझ में आ रही है बात, ये नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, ये गर्मियों की जो छुट्टियां है ना, हर शख्स मोबाइल फोन से चिपटा हुआ है, चिमटा हुआ है, आसान लफ्जों में जो कहती हैं हमारी अमियां, हर वक्त मोबाइल से चिपके रहते हो, तो इसी वजह से नेटवर्क के ये मसले हुए, में नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। चले जी, हम गड़बड़ नहीं होने देने, हम लोग जो है जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक पे जाके जल्दी से वापस दस।
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM 88 की आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम अख्तियार कन, गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, आई उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो, बारन बुजुर्गन आई बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक महफूज रहो।

0: Alhabib Current Plus account. जिसमें मिले free checkbook, debit card, banker's check, e-statement, online banking, Alhabib Digital के जरिए internet banking और SMS alerts facility. ATMs and cash deposit machines की easy accessibility. मुल्क भर में फैला हुआ branches का वसी network. Alhabib Current Plus account. भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का.
1: शदीद गर्मी के सबब शहरन की गुजारिश कई बने थी.
2: मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी. ATMs and cash deposit machines की easy accessibility. मुल्क भर में फैला हुआ branches का वसी network. Alhabib Current Plus account. भरोसा भी, रफ्तार भी. Bank Alhabib. रिश्ता भरोसे का.
3: This program is brought to you by
4: Alhabib Current Plus account. भरोसा भी, रफ्तार भी. Bank Alhabib. रिश्ता भरोसे का.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
6: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

कांच की खुशियां बिकती होती, कांच की खुशियां बिकती होती और दुखों का ठेला होता, एक टके में आंसू आते और मोहब्बत चार टके में, पांच टके में सारी दुनिया मुफ्त हंसी और मुफ्त सितारे, चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता, ख्वाहिश नाम की

उन्हें अंदाज बदल लेना, आवाज बदल लेना, दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अगयार वो ही रखना, अहबाब बदल लेना, आदत ही बना ली है शहर के लोगों ने, रस्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज अगर दो तो कतरा के निकल जाना, हर एक से जुदा रहना, हर एक से खफा रहना, हर एक का गिला करना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रस्ते में रुला देना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। वेल जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।

ना फिर से सुनाएंगे हम तुम्हें, ना फिर से सताएंगे हम खुदा हाफिज, तुम्हें ना फिर से सताएंगे हम खुदा हाफिज के, अब ना लौट के आएंगे हम खुदा हाफिज, रखेंगे तुमको बहुत दूर अपनी नजरों से, मगर ना दिल से बुलाएंगे हम खुदा हाफिज, हमारी जात से तकलीफ खुदा हाफिज, अगर मिलेंगी ना खुशियां तुम्हारी

आहे त बराबरीअ जी बुनियाद ते विराई वञे। बलोचिस्तान में पाणीअ जी शदीद कोट वारो मामिलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी MNS जो सिंध ऐं बलोचिस्तान खे घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि बारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी कोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाणी बाबति इर्सा में थियल फ़ैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। सिंध में नवीद कंवर चयो त इर्सा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे। इर्सा कानून खां मता फैसला कया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू चयो त इर्सा में इतफ़ाक़ी राय सां फैसला थिया आहिनि। अॼु सिंध खे 1,40,000 क्यूसिक पाणी जारी थियो आहे। PPMNA शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त न आहिनि। इर्सा पाणी वारे 1991 ठाह ते अमल दरामद न करे रहियो आहे। सिंध में सूरतयाल संगीन आहे।

हमलनि बाद आपने हरमुस के पहिरीं ट्रैफिक लाइ बंदि करे छॾियो। आपने हरमुस मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ पहिरीं बेड़नि खे निशानो बणाइण जो ऐलान पासदारनि ख़िलाफ़ चयो आहे त अमरीकी जारियत सबबि अपने हरमुस खे बंदि करे रहिया आहियूं। पहिरीं बेड़ा नुक़सान खां बचण लाइ अपने हरमुस तां सफ़र न कनि। पाकिस्तान पारां अमरीका ऐं ईरान में ताज़ी छिकताण ते घणती ज़ाहिर। धुरियन खे सबर खां कम वठण ऐं जंग बंदी ते अमल करण जी अपील। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी चयो आहे त ख़िते में जारी मौजूदा सूरतहाल ते घणती आहे। तकरार गालियन ऐं सिफारतकारी ज़रिए हल करणु घुर्जे। पाकिस्तान जूं ख़िते जे अमन ऐं इस्तेकाम लाइ सिफारती कोशिशूं जारी आहिनि। इसराइल ऐं लबनान में थियल जंग बंदी बि मस्बत अॻभराई आहे। इसराइल खे जंग बंदी वाइदे ते अमल करणु घुर्जे।

एन टेकावड़ जो इज़हार। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं कंट्रोलर ज़मानत जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया। टिन्ही ॼणनि खे तोहीन अदालत जो नोटिस बि जारी। सूमर ते पेश थियण जो हुकुम। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त अदालती हुकुम ते अमल न थियण बाबति जवाब ॾिनो वञे। असेंबली जे स्पीकर पीटीआई मेंबर इक़बाल अफरीदी जी रुकनियत बजट सेशन ताईं मुअतल करे छॾी। स्पीकर रियाज़ सादिक चयो त इक़बाल अफरीदी संदसि स्टाफ ते हथ खयो आहे। मीडिया ऐं पुलिस वारनि सां बदतमीज़ी कई आहे। हीउ सभु क़बूलण जोगो। قومی اسمبلی بھی اقبال افریدی کی رکنیت معطلی وارو ٹھہراؤ منظور کیا।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।